मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: शायद तू ए क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के? अच्छा

0: 107.9 FM रेनबो दिल से दिल तक पर मैं शोच इश्वर आप सबके साथ और सुन रहे हैं आप कार्यक्रम जिसका नाम है नॉन स्टॉप गप शप। सुबह के 10 बज चुके हैं और 10 बजते ही मैं और आप जो है हम जो है साथ में जो जाते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम जिसका नाम है नॉन स्टॉप गपशप। और नॉन स्टॉप गपशप में ढेर सारी बातें होंगी, साथ में होंगे प्यारे प्यारे गीत आप सबके लिए। दुर्गा पूजा का पहला दिन, प्रथमा का दिन और जो है बहुत ही ज़्यादा खुशी का मौका। वैसे भी हम लोग जो है दुर्गा पूजा में जो है थोड़ा ज़्यादा ही एक्साइटेड रहते हैं और ऐसे में बेहद खुशी के साथ शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम।
1: थोड़ी सी बातें और ढेर सारे गाने, आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप। नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर।

बहुत स्वागत है आप सबका कार्यक्रम नॉन स्टॉप घर गपशप है। और जो है आज आपके घरों में तो काफ़ी तैयारियां चल रही होंगी, है ना, जोर शोर से दुर्गा पूजा की तैयारियां। और आज दुर्गा पूजा का पहला दिन, किसी के घर में नई साड़ी आ रही है, कोई तो अपनी ज्वेलरी मैचिंग के लिए मार्केट जा रहा है। और सबसे पहली बात जो आज जो है सब अपने घर में दुर्गा जी की थोड़ी सी पूजा तो ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका कार्यक्रम नॉन स्टॉप में। और तो दोस्तों, क्योंकि आज से शुरू हो रहा है माँ की भक्ति, उत्साह, उमंग और खुशियों का महापर्व, कोलकाता की गलियों से लेकर बड़े बड़े पूजा पंडालों तक हर तरफ गूंजने वाली है ढाकी आवाज, शंख की ध्वनि और माँ दुर्गा के स्वागत का जयकारा। और ऐसे में आज नवरात्रि का पहला दिन यानी माँ शैलपुत्र की आराधना का दिन है। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को हम पूजा करते हैं और हर स्वरूप अपने भीतर एक विशेष संदेश समेटे हुए है। जहाँ माँ शैलपुत्री हमें दृढ़ता और शक्ति का संदेश देती हैं, वहीं माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या और धैर्य की याद दिलाती है। माँ चंद्रघंटा साहस का प्रतीक है। माँ कुष्मांडा सृजन और ऊर्जा से जुड़ी है। माँ स्कंद माता ममता का स्वरूप है। माँ कात्यायनी शक्ति और संकल्प का, तो वहीं माँ कालरात्रि निर्भयता का प्रतीक है। माँ महागौरी शांति और पवित्रता का, और माँ सिद्धदात्री सिद्धि एवं पूर्णता का प्रतीक मानी जाती है। दोस्तों, सबसे खास बात क्या है पता है? सबसे खास बात यह है कि इन 9 रूपों में एक बात जो है सबसे अनोखी है और कॉमन भी, वो क्या है पता है? वो ये कि रूप चाहे कोई भी हो, अनेक रूप हो, लेकिन माँ हर रूप में माँ ही होती है। चाहे वह हमें दुर्गा कहे, काली कहे, अंबे कहे या फिर जगधात्री करे, हम जो है माँ के बच्चे हैं। माँ के हर रूप में अपने बच्चों के लिए ममता, रक्षा और मंगल की कामना बिल्कुल जुड़ी होती है, हमेशा जुड़ी होती है। जैसे एक माँ अपने हर बच्चे की खुशी चाहती है, वैसे ही माँ हम भक्तों की, उनके परिवारों की, उनके दुनिया की, उनके आसपास की खुशहाली ही चाहती है। और हम सब भी माँ से बस इतना ही तो चाहते हैं, साथ में कुछ वक्त, जैसे वो हमारे घर, हम उनके साथ। हाँ हाँ हाँ, दुर्गा पूजा का वक्त है, बातें भी दुर्गा पूजा की हो रही हैं, और लेकिन गीत भी तो जरूरी है। अगला गीत बिल्कुल तैयार आप सबके लिए, सुनते रहिए, साथ रहिए।

उसके 20 मिनट स्टूडियो की घड़ी में वक्त बातें हो रही हैं कोलकाता में दुर्गा पूजा की, और कोलकाता में माँ के आने का जो है खुशी आनंद कुछ अलग ही होता है। यहाँ दुर्गा पूजा केवल पूजा नहीं बल्कि एक भावना है, एक परंपरा है, पीढ़ियों से जुड़ी एक खूबसूरत याद है। यहाँ कुमारटली में तैयार होती हैं प्रतिमाएं, बनते हैं अनोखे पंडाल और ढेर सारी मस्ती मज़े दोस्तों के साथ गपशप, और ये नॉनस्टॉप गपशप रुकती ही नहीं बस है ना। हमारे लिए दुर्गा पूजा सिर्फ एक त्योहार तो बिल्कुल नहीं, ये हमारे लिए एक इमोशन है। पूजा का मतलब नए कपड़े, दोस्त, प्लानिंग, रात भर पंडाल घूमना, स्ट्रीट फूड का मजा लेना और साथ में बेहद खूबसूरत माँ की प्रतिमा देखना, पंडाल होपिंग करना, ये सब हमारे लिए दुर्गा पूजा का बस एक पार्ट ही है ना। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि कोलकाता में दुर्गा पूजा की तैयारी शायद पंडाल खुलने के कई दिनों पहले से शुरू हो जाती है। ऐसा होता है ना जैसे 3 महीना पहले से ही हम लोग बोलते हैं पूजा की शॉपिंग हो गई, और तुम्हारे इलाके में इस बार कौन सी थीम पे पंडाल बनने वाला है, कुछ ऐसी ही बातें हम लोग करते रहते हैं, क्यों है ना।

कई बार ऐसा होता है कि किसी पंडाल में किसी मंडप पे जाके हमें भी कोई अजनबी बस यूं ही मिल जाता है, टकरा जाता है और शायद उनसे बातें ज़रूरी हो जाती हैं।

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: एक चुटकी नुस्खे,
2: दोस्तों दुर्गा पूजा के वक्त और आज दुर्गा पूजा का पहला दिन और नॉन स्टॉप गपशप में अब बातें होंगी। बताऊंगी आपको कुछ नुस्खे, एक चुटकी नुस्खे के अंतर्गत। तो दोस्तों अब दुर्गा पूजा का समय है, नाम सुनते ही मन में आ जाती है नई नई बात और जो है नई नई खूबसूरत साड़ियाँ, खूबसूरत मेकअप, खूबसूरत पंडाल और दोस्तों के साथ ढेर सारी मस्ती और साथ में बहुत सारे खाने, है ना। जी तो चुटकी वाले जो है नुस्खे, इसमें आज मैं सबसे आपको पहले बताऊं कि मेकअप के लिए स्क्रीन को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आज से तो हम सब भाई घूमने के लिए निकलने ही वाले हैं। तो दोस्तों मेकअप लगाने से पहले चेहरे को साफ कीजिएगा, स्किन के हिसाब से मॉइस्चराइज़र लगाइएगा, फिर दिन में बाहर निकल रहे हैं तो सनस्क्रीन, या फिर अगर शाम को बाहर जा रहे हैं तो उस हिसाब से अपने मेकअप को कीजिएगा। इससे मेकअप भी बेहतर होगी, बैठेगा और धूप में त्वचा सुरक्षित भी होगी। या फिर नया मेकअप प्रोडक्ट सीधे चेहरे पर अगर आप लगाएंगे तो उससे पहले थोड़े से छोटे से हिस्से में अगर टेस्ट कर लें तो ये बेहतर होगा। दूसरा जो नुस्खा है वो ये कि पूजा में घूमते घूमते पानी पीना मत भूलिएगा, क्योंकि अपने साथ पानी की बोतल रखना बहुत ज़रूरी है। नियमित अंतराल में पानी पीते रहिए, नींबू पानी भी पी सकते हैं, लेकिन हाँ बस ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना हो कि आप नींबू पानी में ज़्यादा चीनी डाल दें और फिर वो आपकी डाइट को गड़बड़ कर दें, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। और याद रखें कि जितना आप हाइड्रेट रहेंगे उतना आपकी स्किन में ग्लो भी आएगा और घूमने की आपको एनर्जी भी मिलती रहेगी, है ना। अब बातें हो रही हैं दुर्गा पूजा की, तो ये 10 दिन वाला चलने वाला जो त्यौहार है इसमें घूमने का तो बस अलग ही मज़ा है। लोग दिन में भी घूमते हैं, रात में भी घूमते हैं, और रात भर अगर आप पंडाल में घूमने का मन बना रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने नींद को थोड़ा सा शेड्यूल कर ले, क्योंकि कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा पर्याप्त नींद जो है आप ले लें। ऐसा ना हो कि 10 दिन आप इतना घूम लें और घूमते घूमते थक जाए और नींद क्यों, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप कितना भी मेकअप लगा लें आपके चेहरे की थकान जो है दूसरों को कहीं ना कहीं दिख जाएगी। और दूसरी बात ये कि अगर आप घर लौट रहे हैं, बिल्कुल बिस्तर पे जाने से पहले, सोने से पहले अपने चेहरे को ठंडे पानी से अच्छे से साफ करें और एक फ्रेश फीलिंग के साथ बिस्तर पर जाए, इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी। और वैसे भी मेकअप लगाकर सोने से तो चेहरे में प्रॉब्लम होती है, ये हम सबको पता ही है, है ना। एक और टिप जो मैं आप तक पहुंचाऊं वो ये कि हाँ हाँ मुझे पता है कि कई लोगों को ये पता है, लेकिन फिर भी जैसे मैं जब छोटी थी ना तो मेरा इंटेंशन ही होता था दुर्गा पूजा में नए कपड़े के साथ जो है मैचिंग नए नए जूते भी लूं। और जब मैं उन नए जूतों को पहन के पंडाल मंडप की ओर लिए जाती थी घूमने के लिए, और मेरे पैरों का जो हाल होता था वो तो बस सोचने वाली बात है। इसलिए एक चुटकी नुस्खे में आपको ये भी नुस्खा दूंगी कि प्लीज़ जो है कंफर्टेबल जूते पहने घूमने जाने के लिए, क्योंकि बहुत सारा चलना पड़ता है और इतना चलने के लिए अगर आप कंफर्टेबल जूते नहीं पहनते तो आपको दिक्कत हो सकती है। नए जूते अगर पहन रहे हैं तो पैर में पहले अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाएं, तेल लगाएं, नारियल तेल यूज़ कर सकते हैं, और इससे क्या होता है ना आपका पैर जो है कटता नहीं है, उसमें थकान कम होती है। साथ 10 दिनों में आपको जो है ढेर सारे बाहर का खाना भी खाना है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि ऐसा

0: कुछ ना खाएं जिससे आपके सेहत को हानि पहुंचे। अपने आप को संभाल के रखिएगा क्योंकि 10 दिन पूरा एंजॉय करना है। ऐसा नहीं कि पहला ही दिन कुछ ऐसा खा लिया बस अब 9 दिन जो है और कहीं घूम ही नहीं पाए। आराम आराम से 10 दिन पूरा इस दुर्गा पूजा के महाउत्सव को हम लोगों को जो है एक साथ एंजॉय करना है। क्यों, सही है ना?
1: एक चुटकी नुस्खे। थोड़ी सी बातें और ढेर सारे गाने, आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप। नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

अब जो है स्टूडियो की घड़ी कह रही है कि मुझे कहना होगा आप सबसे टाटा एंड बाय बाय, लेकिन आप मुझे सुन सकते हैं एक बार फिर 11:10 पर कार्यक्रम जो आगे उनकी याद में, लेकिन इस चैनल पे नहीं, चैनल एफएम रेनबो पे नहीं, एफएम गोल्ड पर सुन सकते हैं आप मुझे। और संतरी साथ रही है वाला से बनी आई एफ एम ट्रेन बहुत दिल से दिल तक सुन रहे थे आप कार्यक्रम जिसका नाम है नॉन स्टॉप गपशप। और कार्यक्रम का आखिरी गीत छोड़ जाऊंगी आप सबको साथ, सुन रही साथ रहिए।

0: সেবির এক ইনভেস্টর সচেতনতামূলক উদ্যোগ। আরো জানতে হলে সেবির ইনভেস্টর ওয়েবসাইট দেখুন, নয়তো সেবি সার্থী অ্যাপ ডাউনলোড করুন।
1: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है
2: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
1: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
2: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
1: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: कालो जोई बांग्ला गानेर धारा छुए जाक मन सुनछेन गान दोरिया 107 FM रेनबो ते गान दोरिया छुए जाक मन।

0: 107 FM Rainbow Presents परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति
1: गुड आफ्टरनून, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी आरजे फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत। ढेर सारे प्यार और अपनेपन के साथ आप सभी का स्वागत करती हूं उस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है परियोजना प्रस्तुति। और जैसा कि आप जानते हैं कि परियोजना प्रस्तुति में हर रोज हम कोई ना कोई एक योजना पर ढेर सारी बातें आप तक पहुंचाते हैं, साझा करते हैं। तो आज उस कड़ी को ध्यान में रखते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत सरकार की एक प्रमुख सामाजिक अभियान योजना है और इसी से संबंधित कुछ बातें आपसे साझा करना चाहूंगी। उसकी शुरुआत और विस्तार की बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में इसकी शुरुआत की गई थी। विस्तार की बात करूं तो ये योजना शुरुआत में 100 चुनिंदा जिलों में लागू हुई थी और बाद में इसे देश के सभी जिलों तक बढ़ा दिया गया था। ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के एक संयुक्त पहल है। और जाहिर सी बात है कि जब एक योजना है तो उसके कुछ उद्देश्य भी होंगे। लिंग अनुपात में सुधार, गर्भ में बच्चियों की हत्या, कन्या भ्रूण हत्या और लिंग आधारित चयन को रोकना, बालिकाओं की सुरक्षा, जन्म के बाद बच्चियों का अस्तित्व और सुरक्षा सुनिश्चित करना, शिक्षा को बढ़ावा देना यानी कि बालिकाओं की स्कूल में दाखिले, उनकी निरंतर पढ़ाई और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को बढ़ावा देना, सामाजिक सोच में बदलाव लाना, बेटियों के प्रति समाज के नकारात्मक दृष्टिकोण और रूढ़िवादी परंपराओं को समाप्त करना। फिर किसी रोज किसी और एक योजना के साथ हाजिर हो जाऊंगी और फिलहाल रुक करते हैं अपने कार्यक्रम की ओर यानी कि तीन का तड़का।
0: परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति
2: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का। आप सुन रहे हैं तीन का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर तीन का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर।

गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, हाजिर है आपकी आरजी फ्रेंड्स सुलक्षणा पर्वत, ढेर सारा प्यार और अपनेपन के साथ आप सभी का खैर मकदम करती है, स्वागत करती है, वेलकम करती है उसी कार्यक्रम में जिसका नाम है तीन का तड़का हैशटैग दिल धड़का। हाँ जी, तड़का तो लगाऊंगी लेकिन वो तड़के जो हैं वो बॉलीवुड गानों के होंगे और आपका फुल टू एंटरटेनमेंट होगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, तीन का तड़का मतलब ट्रिपल म्यूजिकल एनर्जी बूस्टर प्रोग्राम। तो आज जो है, आज से नवरात्रि का पर्व शुरू हुआ है, तो मैं यही कहूंगी कि माँ का पर्व आता है, हजारों खुशियां लाता है, इस बार माँ आपको वो सब दे जो आपका दिल चाहता है। नवरात्रि की शुभकामनाएं।

इस खूबसूरत से गीत को आपने सुना श्रेया घोषाल और उस्मान मीर की आवाज में फिल्म रामलीला से, लिरिसिस्ट सिद्धार्थ गरिमा, कंपोजर संजय लीला बंसाली। और ऐसा है कि आज नवरात्रि का पहला दिन है और भला ऐसा कैसे हो सकता है कि सुलक्षणा आए आपसे मिलने और खाली हाथ आए। चलिए, बहुत सारा मीठा लाई हूँ, अगले गाने के जरिए आप तक पहुंचा रही हूँ।

इस गीत को आपने सुना फिल्म प्रेम रतन धन पायो से शान और साथियों की आवाज में। इरशाद कामिल ने बड़ी खूबसूरती से बड़े मिठास के साथ जो है इसे कलमबद्ध किया और हिमेश रेशमिया ने संगीतबद्ध किया इस गीत को। और अब आगे बढ़ते हुए, जैसा कि आप जानते हैं कि बॉलीवुड का भी कुछ तड़का लगता है इसमें, यानी कि कुछ गॉसिप हो या फिर फिल्म रिलीज के बारे में हम जानकारी दें, तो चलिए छुट्टियों का समय है तो क्यों ना मैं बता दूं आपको लगे हाथ की कौन कौन सी फिल्में रिलीज होने वाली है अक्टूबर में। और आज तो 11 तारीख हो गया, लेकिन 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज हुई थी फिल्म दृश्यम द कंक्लूजन। और इस फिल्म में कलाकार जो है वो अजय देवगन, तब्बू, श्रेया शरण। इसके अलावा एक और फिल्म रिलीज हुई 2 अक्टूबर को, वो है प्रेम कीटाणु। कलाकारों की बात करूं तो अपार शक्ति खुराना और वीर पहाड़िया इसमें है मुख्य रूप से लीड रोल में। एंड द अदर फिल्म, तीसरी फिल्म जो है वो पूजा मेरी जान। कलाकार जो है इसमें हुमा कुरैशी, मृणाल ठाकुर, विजय राज। और 9 अक्टूबर को भी एक फिल्म रिलीज हुई थी, वो है उड़ता तीर। कलाकार आयुष्मान खुराना, सारा अली खान। बहुत ही अच्छी फिल्म है, आप भी जाके देखिए। और छुट्टियों में क्या है, मौज मस्ती कीजिए, फिल्में वुल्में देखिए, खाइए पिए, घूमिए। आगे बताऊंगी कि 16 अक्टूबर यानी कि आने वाला जो है फ्राइडे, उस दिन कौन सी फिल्में जो है रिलीज होने वाली है। लेकिन

पहले क्यों ना सुन ले एक खूबसूरत सा गीत, बहुत ही रोमांटिक गाना है। पलक मुच्छल की आवाज में इस गीत को सुनेंगे, फ्रॉम द मूवी एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। मनोज मुंतशिर ने बड़ी खूबसूरती से इसे इस गीत को लिखा है और अमाल मलिक ने संगीत से संवारा है इस गीत को।

अगला गाना प्ले करने से पहले कुछ कहना चाहूंगी, और जो कि बहुत ही जरूरी है और हमें इस बारे में सोचना भी चाहिए, क्योंकि जब भी त्योहार आते हैं ना, तो कोई भी फेस्टिवल हो हम बड़ी मतलब खुशी के साथ उसे मनाते हैं, हर्षोल्लास के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उनको भी याद करना चाहिए। किसे? भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और सभी अर्धसैनिक बलों, जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के वीर जवानों और उनके परिवारों को, तो 107 एफएम रेनबो की पूरी टीम की तरफ से इन सभी जवानों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगला गाना 107 एफएम रेनबो के कार्यक्रम 3 का तड़का की तरफ से उन्हें मैं डेडिकेट करती हूं।

हूं। और अगला गाना आप सभी के लिए फिल्म बॉर्डर 2 से सोनू निगम, अरिजीत सिंह, दिलजीत दोसांज, विशाल मिश्रा, रूप कुमार राठौर की आवाज में जावेद अख्तर ने इसे बड़े खूबसूरती के साथ कलमबद्ध किया है और संगीत से सजाया अनु मलिक ने।

देश की सीमाओं और हमारी सुरक्षा के लिए मुस्तैद सभी वीर जवानों को पूरा देश नमन करता है। आपकी कर्तव्य निष्ठा, त्याग और साहस के कारण ही पूरा देश सुरक्षित होकर त्योहार मना पाता है। माँ दुर्गा आपको सदैव शक्ति, साहस और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें।

अमिताभ भट्टाचार्य और अनुषा माने की आवाज में इस खूबसूरत से गीत को सुना आपने। फिल्म का नाम चेन्नई एक्सप्रेस, गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य, संगीतकार विशाल अंशेखर। एंड अब आगे बढ़ते हुए अगला गाना आप सभी के लिए फिल्म जय हो से अरमान मलिक और मेरिन डिक्रूज की आवाज में। शब्बीर अहमद ने इसे बड़ी खूबसूरती के साथ जो है इस गीत को जो है लिखा है और अमाल मलिक ने जो है संगीत से संवारा है।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का। टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर। टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर।
1: स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 3:35 और 5 सेकंड और आप सुन रहे म्यूजिकली योर्स पर आपका ही पसंदीदा नून शो तीन का तड़का हैशटैग दिल धड़का, यानी कि ट्रिपल म्यूजिकल एनर्जी बूस्टर प्रोग्राम गानों का तड़का लगाते हैं इस कार्यक्रम में और इसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। और त्योहारों का मौसम है तो चलिए हो जाए थोड़ा डांस वांस विद द हम्मा सॉन्ग।

16 अक्टूबर 2026 को तीन फिल्में रिलीज होने वाली है। पहला है प्रहार, कलाकार इसमें है राजकुमार राव और वमिका गब्बी, और दूसरी जो फिल्म है वो है नई नवेली, और इसमें यामी गौतम नजर आएंगी आपको। रफ्तार है वो तीसरी फिल्म जो 16 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। राजकुमार राव और कीर्ति सुरेश जो है इसमें लीड रोल में नजर आएंगे। 23 अक्टूबर को चार फिल्में रिलीज होने वाली है और उसके बारे में भी आपको बताऊंगी मैं, चार नहीं पांच। फिलहाल रुक करते हैं अगले गीत की ओर। अगला गीत हमने लिया है फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से शेखर राजवानी और सलीम मर्चेंट नीति मोहन की आवाज में इस गीत को सुनेंगे। अन्विता दत्त ने इसे कलमबद्ध किया है और संगीतबद्ध किया है विशालन शेखर ने।

इस सुपर रोमांटिक ब्यूटीफुल ट्रैक को आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म डंकी से, और गीतकार इरशाद कामिल, संगीतकार प्रीतम। और जैसा कि मैंने कहा था कि आपसे साझा करूंगी कि 23 अक्टूबर 2026 को कौन कौन सी फिल्में रिलीज होने वाली है, तो दर्शा रिलीज होगी 23 अक्टूबर को और अक्षय खाड़ से इसमें नजर आएंगे। लिटिल थॉमस भी रिलीज होगी 23 अक्टूबर को। इसके साथ और भी तीन फिल्में हैं, मैं ना रहा मेरा, और इस फिल्म में अध्यान सुमन जो है वो नजर आएंगे। पहला प्यार दूसरी बार अलीशा चोपड़ा और स्पर्श वालिया इसमें लीड रोल में नजर आएंगे। पहला प्यार दूसरी बार, फिल्मों के नाम भी बड़े अजीब और गरीब है। वैसे हमें क्या लेना देना नाम से, हमें तो फिल्म देखने से काम है। और पांचवी फिल्म जो है वो है तुम मेरे हो। गुरमीत चौधरी और ईशा मालविया जो है इस फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे। और इसी के साथ ये भी बता दूं कि साउथ भारतीय फिल्में जैसे कि रजनीकांत की जेलर 2 और चिरंजीवी की विशंभरा भी हिंदी डब वर्जन में इसी महीने रिलीज होने वाली है। तो बाय द टाइम यू डिसाइड कि कौन सी फिल्म देखनी है, कब देखनी है, मैं आगे बढ़ती हूं और आपको सुनवाती हूं फिल्म केदारनाथ से ये खूबसूरत सा गीत अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाज पे, काफिराना।

स्टूडियो की घड़ी में समय उछला है 3:54 और 54 सेकंड, और फिलहाल समय हो चला है कि मैं थोड़ी ही देर में आज के लिए ये कार्यक्रम 3 का तड़का जो है रैप अप करूं, और अभी जब यहां से जाऊंगी तभी तो 5:15 आपके लिए दिल से दिल तक वाला चैनल पर नहीं बल्कि खरा सोना वाले चैनल पर यानी कि 100.1 FM गोल्ड पर लेकर आऊंगी कार्यक्रम चायन क्लासिक्स, रहूंगी 5:15 से लेकर 6:30 तक। और फिलहाल कार्यक्रम को विराम देने से पहले हमेशा की तरह यही कहूंगी कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपने चारों तरफ खुशियों के फूल खिलाते रहिए। और चलते चलते आप सभी के लिए फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई से के और डोमिनिक की आवाज में ये गीत, निलेश मिश्रा ने इसे बड़ी खूबसूरती से लिखा है और प्रीतम ने संगीत से सवारा है। इस गीत को सुनते सुनते आज्ञा दीजिए अपनी आज फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत को, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।

0: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
1: पुतला बोल रहे?
0: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब?
0: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा,
1: पर हम तो सब यही डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: अच्छा, गाछ तो राख लेन, किंतु पूजोय रंग और आलो ना होले चलबे की करे? एबार पूजोर बाजार थेके प्लास्टिकेर मालाके एकदम से नो टू प्लास्टिक, जेरकम आमरा कोट अनकोट बोलेछिलाम, हाँ প্লাস্টিকের মালাকে একেবারে বাদ দিয়ে দিন। ঘরের জানলায় বা ব্যালকনিতে টবে লাগান মরশুমি ফুলের গাছ,
4: একদম যেমন জবা গাছ, হলুদ গাঁদা কিংবা সাদা টগর। পুজোর দিনগুলোয় গাছ থেকে টাটকা ফুল তুলে মাকে দেওয়ার যে আনন্দ, তা বাজার থেকে কেনা বাসি ফুলে কি সত্যি পাওয়া যায়? না, পাওয়া যায় না। আর একটা প্রোটিপস দিই, খুব ইচ্ছে করছে। হ্যাঁ, আপনার এই ইনডোর প্ল্যান্টসগুলোর পাতার ফাঁক দিয়ে ছোট্ট ছোট্ট টুনি লাইট বা ওয়ার্ম হোয়াইট এলইডি স্ট্রিপ জড়িয়ে দিন। উফ, রাতে যখন ঘরের মেন লাইটটা নিভিয়ে

0: এই অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা করলেন ভারত সরকারের কৃষি মন্ত্রক।
1: अभी आप सुन रहे थे एक विशेष कार्यक्रम फार्म टू सिटी और अब आप सुनेंगे कार्यक्रम छायालोक यादों की बारात।
2: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है
3: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
2: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुँचाती है।
3: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
2: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

0: सिटी ऑफ जॉय कोलकाता और उस कोलकाता के दी रियल रेडियो 107 एफएम रेनबो पर ढेर सारा प्यार और अपनेपन के साथ हाजिर है आपकी आरजे फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत, जो तहे दिल से आप सभी का खैर मकदम करती है, वेलकम करती है, स्वागत करती है म्यूजिकल एनर्जी बूस्टर प्रोग्राम छायालोक में। और जैसा कि आप जानते हैं कि संडे इवनिंग आपके लिए रहता है सेगमेंट यादों की बारात, लेकिन आपको बता दें कि आज का दिन बहुत खास है। पहला तो ये कि आज नवरात्र का पहला दिन है और सभी मतलब कहीं ना कहीं जश्न वाले मूड में आ गए हैं, भक्ति वाले मूड में आ गए हैं और बहुत सारी मतलब खुशियों की जो है वो तलाश में सब जुटे हुए हैं कि कैसे कितनी खुशी मनानी है और कितनी खुशियां बांटनी है। वैसे बता दूं कि आज का दिन जो है वो बहुत खास है बॉलीवुड वालों के लिए और हम सभी सिनेमा प्रेमियों के लिए, खास करके बॉलीवुड सिनेमा प्रेमियों के लिए, क्योंकि आज है सदी का महानायक और बिग बी जिन्हें हम कहते हैं उनका बर्थडे। तो आज उनके जन्मदिन पर 107 एफएम रेनबो की पूरे टीम की तरफ से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। वो स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो और उनके अभिनय की कला का जौहर हम सिल्वर स्क्रीन पर आगे भी देखने का हमें मौका मिले। और फिलहाल कार्यक्रम का जो है आगाज करना चाहूंगी मैं, जी हाँ, डायलॉग से, क्योंकि उनकी आवाज भी उनकी पहचान है। तो फिल्म शोले में एक डायलॉग था मौसी के साथ, वीरू की सगाई की बात करने गए थे अमिताभ बच्चन, तो चलिए सुनते हैं उसी डायलॉग को।
1: कोच जाऊंगा, फन जाऊंगा, मर जाऊंगा, हट जाओ। कर रहा हूँ भैया, जो मजनू ने लैला के लिए किया था, रांझा ने हीर के लिए किया था, रोमियो ने जूलियट के लिए किया था, सुसाइड, सुसाइड।
2: अरे भाई, ये सुसाइड क्या होता है?
3: अंग्रेज लोग जब मरते हैं तो उसे सुसाइड कहते हैं।
2: लेकिन ये अंग्रेज लोग मरते क्यों हैं?
3: वो,
4: अरे भाई बात क्या है, तुम सुसाइड क्यों करना चाहते हो?
1: ये मत पूछो चाचा, तुम्हारे आंसू निकल आएंगे। ये बड़ी दुख भरी कहानी है, इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है। ये बसंती है ना, इससे मेरा लगन होने वाला था चाचा, लेकिन इसकी बुढ़ी मौसी ने बीच में भांजी मार दी। अब मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता। गांव वालों, तुमको मेरा आखिरी सलाम, गुड बाय, गुड बाय।
2: अरे भाई, ये गुड बाय क्या होता है?
3: अंग्रेज लोग जब जाते हैं तो गुड बाय कहते हैं।
2: लेकिन ये अंग्रेज लोग जाते कहाँ हैं?
1: मैं जा रहा हूँ, भगवान मैं आ रहा हूँ। रुक जाओ, तुम लोग जोर देते हो, थोड़ी देर रुक जाता हूँ।
5: अरे वाह, अरे तुम कैसे दोस्त हो, तुम यहाँ बैठे हो?
6: क्यों, क्या हुआ?
5: मुझे क्या मालूम क्या हुआ, वो देखो तुम्हारा दोस्त कहाँ चढ़ गया। देखो
1: मेरा दिल भर चुका है।
5: देखा, देखा तुमने?
1: मेरे रास्ते,
6: हाँ देखा, कुछ नहीं होगा
1: मुझे तो।
5: यूं कि मैंने एक से एक जाले देखा, मगर तुम्हारे जैसे पत्थर दिल दोस्त नहीं देखा जो। अरे संभालो,
1: मेरा कोई नहीं इस दुनिया में, न यार न दोस्त, इसलिए मैं जानते कर रहूंगा। लेकिन एक बात सुन लो गाँव वालो,
0: ऐसा है दोस्तों कि ये जो बीच में जय को आपने सुना, वीरू का ही दोस्त है। भले वीरू कहे कि मेरा कोई दोस्त हो ना हो, लेकिन वीरू और जय की दोस्ती का जो कमाल देखा हमने शोले फिल्म में, भला उसे कौन भुला सकता है।

0: से अभी हम प्रयागराज कहते हैं, उत्तर प्रदेश में हुआ था उनका जन्म। और डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन एक प्रसिद्ध हिंदी कवि थे और माताजी तेजी बच्चन एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। बचपन का नाम जो था अमिताभ बच्चन का, उनका प्रारंभिक नाम इनकलाब श्रीवास्तव रखा गया था, जिसे बाद में कवि सुमित्रानंद पंत ने उनके सुझाव पर बदलकर अमिताभ कर दिया गया। उनके छोटे भाई का नाम अजिताभ बच्चन है और उनकी शिक्षा की बात करूं तो उन्होंने नैनीताल के शेरवुड कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज में पढ़ाई की। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने कोलकाता में भी एक कंपनी में काम किया था। फिलहाल आगे बढ़ते हुए और सुनते हैं माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस, फिल्म अमर अकबर एंथनी से किशोर कुमार और अमिताभ बच्चन की आवाज में।
1: You see, the whole country of the system is juxtapositioned by the hemoglobin in the atmosphere because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own verbosity.
2: What?
3: My name is Anthony Gonsalves.
2: Gonsalves?
3: Right. My name is Anthony Gonsalves.

0: गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: ओह माय,
0: राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया is juxtapositioned by the hemoglobin of the atmospheric pressure in the country.

0: जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: ओह क्यूट,
0: राइट।

0: Number 420.
1: Excuse me, please. My name is Frankie?
2: No.
1: No. Sebastian?
2: No.
1: Goldie? Soldi?
2: No. Anthony Gonsalves.
0: Oh, yes. Anthony Gonsalves.
3: अमिताभ बच्चन की फिल्मी सफर और संघर्ष की बात करूं तो डेब्यू किया था उन्होंने 1969 में फिल्म साथ हिंदुस्तानी से बतौर अभिनेता अपनी शुरुआत की। पहला ब्रेक 1971 की फिल्म आनंद और 1973 की फिल्म जंजीर से उन्हें जबरदस्त पहचान मिली और वे एंग्री यंग मैन के रूप में उभरे। उनकी प्रमुख फिल्मों की बात करूं तो 1975 में दीवार, 1975 में ही आई थी फिल्म शोले, 1990 में अग्निपथ, 2005 में ब्लैक पाई रिलीज हुई थी 2009 में और पीकू 2015 में। जैसी कई सैकड़ों फिल्मों में उन्होंने काम किया है और टेलीविजन की बात करूं जो उनसे जुड़ी हुई है और सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि वे मशहूर क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति के बीसी के होस्ट के रूप में भी घर घर में लोकप्रिय हैं। व्यक्तिगत जीवन की बात करूं पर्सनल लाइफ के बारे में तो उनका विवाह जो है वो 3 जून 1973 को उन्होंने अभिनेत्री जया भादुरी यानी कि जो अभी जया बच्चन हैं उनसे उनकी विवाह हुई थी। और संतान की बात करें तो उनके 2 बच्चे हैं, अभिषेक बच्चन पुत्र और श्वेता नंदा पुत्री। और क्या, चलिए यहां सुनते हैं गीत फिल्म अभिमान से लता मंगेशकर की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे कलमबद्ध किया और एस डी बर्मन ने इसे संगीतबद्ध किया।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 7:53 और 8 बजे तक रहूंगी मैं आपके साथ, और 8:02 से लेकर 9 बजे तक रहेगी आपके साथ आरजे देविका। और ऐसा है कि अमिताभ बच्चन की जब बात हो तो उन पे कितना कहा जाए, जितना भी कहो वो कम पड़ता है, लेकिन फिर भी उनके जो प्रमुख सम्मान और पुरस्कार है उससे संबंधित कुछ बातें तो कहना ही चाहूंगी मैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री 1984 में, पद्म भूषण 2001 में और पद्म विभूषण 2015 में दिया गया था और सम्मानित किया जा चुका है उन्हें। वे 4 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत चुके हैं। भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी उन्हें नवाजा जा चुका है। और अगर मैं बात करूं अमिताभ बच्चन के कुछ लोकप्रिय यादगार डायलॉग्स की तो जरूर आपसे साझा करना चाहूंगी। 1988 में एक फिल्म आई थी शहनशाह, उसमें एक डायलॉग था जो कि बहुत सारे लोग आज भी याद करके रखे हुए हैं और याद रहता है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहनशाह। उसके बाद 1975 में एक फिल्म आई थी दीवार, उसमें भी एक बहुत ही जबरदस्त डायलॉग था, बहुत ही फेमस और आज भी मतलब लोग याद रखते हैं, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। उसी तरह फिल्म डॉन का डायलॉग भला कौन भूल सकता है, यह फिल्म रिलीज हुई थी 1978 में, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और शराबी का वो छोटा सा डायलॉग, मूछे हो तो नथू लाल जैसी वरना ना हो। और कालिया, फिल्म कालिया का, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। और नमक हलाल का डायलॉग तो अपने आप में ही क्या बताऊं लाजवाब है। 1982 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। और 2000 में एक फिल्म रिलीज हुई थी मोहब्बतें, बस उसका एक डायलॉग बताऊंगी, सुनाऊंगी आपको, और उसके बाद जो है गाना आपको सुनाऊंगी, और उस गाने को सुनते सुनते आप विदा दीजिएगा अपनी रेडियो दोस्त सुलक्षणा पर्वत को। लेकिन फिलहाल मैं सुना दूं वो मोहब्बतें फिल्म का डायलॉग, परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन, ये हमारे गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं। और अब चलते चलते यही कहूंगी साथियों कि ये जो गीत आप सुनेंगे बागबान फिल्म से, अलका याग्निक, हेमा सरदेसाई, अमिताभ बच्चन और आदेश श्रीवास्तव की आवाज में, समीर ने इसे कलमबद्ध किया है और आदेश श्रीवास्तव ने संगीतबद्ध किया है। इस गीत को सुनते सुनते सुलक्षणा को आज्ञा दीजिए और चलते चलते यही कहूंगी कि आप सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं, माँ दुर्गा आप सबके घरों के घर आंगन में खुशियों की बारिश करें।
2: It's Valentine's Day.

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक
1: 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक म्यूजिकल यॉर्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देविका के साथ 8:03 है स्टूडियो की घड़ी में समय, और जबाब पर लागा नमक इश्क का।

अभी आप सुन रहे थे इस गीत को, और ये गीत था फिल्म का नाम, आपको बता दें कि फिल्म का नाम था ये जवानी है दीवानी। और इस गीत में आप जिनकी आवाज़ सुन रहे थे वो थी विशाल ददलानी के साथ रेखा भारद्वाज की। तो फिलहाल आपके साथ बेहतरीन तराने हैं, और ये डांसिंग नंबर्स जो मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ ना, उसके पीछे वजह है। वजह ये है कि आज से हो चुकी है नवरात्रि शुरू, और हर किसी के घर में फेस्टिव मूड है, तो डांसिंग नंबर सुन के बड़ा मज़ा आता है। और दोस्तों, ऐसे गीतों को सुनने के बाद आपको लगता है कहीं ना कहीं जो फेस्टिव मूड ऑलरेडी शुरू हो चुका है, क्योंकि ये जो फेस्टिव मूड है, इस फेस्टिव मूड का कोई खास समय तो होता है तय, और उस समय में भले हमें छुट्टियां ना मिले, लेकिन अगर पूजा शुरू हो चुकी है या यूं कहीं नवरात्रि शुरू हो चुकी है, घर में पूजा हो रही है, साथ ही साथ चारों ओर रोशनी ही रोशनी है, सुंदर सुंदर पंडाल सज रहे हैं, और माँ दुर्गा की प्रतिमा को जाते हुए जब हम देखते हैं पंडालों तक, तो मन जो है ना वो डांस ही मारने लगता है। तो क्यों कह रही हूँ ऐसी बात, ये बताने के लिए, ये सुखविंदर सिंह की आवाज़ में आप सुनेंगे अगला तराना, जिसमें उनके साथ आवाज़ है उदित नारायण की, क्योंकि ये गीत कह रहा है दिल डांस मारे।

वेल, श्रेया घोषाल की आवाज में भले जो भी तराना हम क्यों न सुन लें, हर तराना हर गीत अपने आप में होता है बेहतरीन। और जब बात होती है इस तरह के गीतों की, जिन गीतों में उनकी आवाज जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट लगती है और साथ ही साथ जिसमें मूड होता है थोड़ा सा अलग, वो गीत भी बेहद बेहतरीन होते हैं। अब अगर बात की जाए हमारे अगले गीत की, तो उस गीत को सुनकर भी आपको कहीं ना कहीं ऐसा ही फील होगा। क्या फील होगा जानने के लिए सुनिए आज के कार्यक्रम का अगला तराना, जिसमें श्रीराम के साथ आवाज है श्रेया घोषाल की।

वेल फ्रेंड्स, अभी आप सुन रहे थे रोमी और तनिष्क बागची की आवाज में फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया से ये गीत, और एक के बाद एक डांसिंग नंबर्स हैं कर रहे आप ही का इंतजार 107 FM रेनबो के कार्यक्रम छायालोक में।

वेल फ्रेंड्स, स्टूडियो की घड़ी में समय 8:50, आप सुन रहे हैं 107 FM रेनबो पर छाया लोक। वेल फ्रेंड्स, आज है अमिताभ बच्चन का बर्थडे, तो उनके जन्म दिवस पर उनकी फिल्म का एक गीत तो बनता है, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

की हवा चले न चले, लेकिन फिलहाल फेस्टिव मूड हो चुका है शुरू, और इस फेस्टिव मूड में बेहतरीन तरह ने डांसिंग नंबर्स का समय, क्योंकि भाई ढेर सारी शॉपिंग के बाद अब जो मूड बहुत अच्छा बना हुआ है, तो इस खूबसूरत मूड को और भी बेहतरीन बनाने के लिए ये बेहतरीन तरह ने, और चलते चलते आप सभी के लिए आज के कार्यक्रम का अंतिम गीत मिस पूजा के साथ नेहा कक्कर नकाश अजीज की आवाज में फिल्म कॉकटेल से सुनते हुए दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट देवे का को इजाजत। गुड नाइट, शब खैर।